लेखने चलु मंद मनमथ पाठ पहिल अनुबंध हृदय मुकुल हिरि हिरि थोर खनि अचर दाए खनि होई भोर।